ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहाय

சத்ய சாயினி. அனந்த கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக், பராபர பிரம்ம, யுகாவதார், பிரேமாவதார், சூரிய மே பிரகாஷ் கே ரூப் மே வித்யமான், சசி மே சீதல்தா கே ரூப் மே வித்யமான், ஜானியோ மே ஜான் கே ரூப் மே வித்யமான், யோகியோ மே யோக் கே ரூப் மே வித்யமான், மா மே மமதா கே ரூப் மே வித்யமான், பக்தோ மே பக்தி கே ரூப் மே வித்யமான், பாவுக் ஜனோ மே பாவோ கே ரூப் மே வித்யமான், ஔர் மீரா மே ஆசுவோ கே ரூப் மே வித்யமான். அனந்த கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக், யுகாவதார், பிரேமாவதார், கருணாவதார், பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபாஜி கே சரணோ மே ஹம் சபி கோட்டிஷா பிரணாம் கர்த்தே ஹே. பகவான், இஸ்ஸே சுந்தர் தின் ஜீவன் மே நீ ஆ சக்தா ஜப் ஆப் சாம்னே ஹோ ஔர் ஆப் ஹீ கி பாத் ஆப் ஹீ போல்னே வாலே ஆப் ஹீ சுன்னே வாலே சாரே சன்சார் மே ஆப் ஹீ நிவாஸ் கர்த்தே ஹே, சாரே பிரம்மாண்ட மே ஆப்கா ஹீ நிவாஸ் ஹே. சுவாமி கி திவ்ய சக்தி சே யே சாரா பிரம்மாண்ட சாரா சன்சார் ஆவ்ருத்த ஹே. வேத ஜிஸ்கே விஷய மே கஹதே ஹே, சாஸ்திர ஜிஸ்கே விஷய மே காத்தே ஹே, தியானி ஜிஸ்கே லியே தியான் லகாத்தே ஹே, யோகி ஜிஸ்கே லியே யோக கர்த்தே ஹே, ஔர் பக்த ஜிஸ்கே லியே பக்தி கோ சாதத்தே ஹே, வே கோய் ஔர் நஹி பல்கி ஸ்வயம் பகவான் பாபா ஹே. வஹீ கீத தன்ய ஹே ஜோ பகவான் கே லியே ஹோ, வஹீ பாவ தன்ய ஹே ஜோ பகவான் கே லியே ஹோ, வஹீ விசார தன்ய ஹே ஜோ பகவான் கே லியே ஹோ, ஔர் வஹீ சங்கீத தன்ய ஹே ஜோ பகவான் கே லியே ஹோ, ஔர் வஹீ சிக்ஷா தன்ய ஹே ஜோ பகவான் கே லியே ஹோ. एक बार अकबर ने तानसेन से पूछा कि मुझे लगता नहीं कि संसार में कोई आपसे अच्छा गाता होगा, जब आप गाते हैं तो दीपक जल उठते हैं, जब आप गाते हैं तो वृष्टि होने लगती है, ऐसा लगता है मुझे तानसेन कि संसार के सर्वश्रेष्ठ गायक आप ही हैं. तानसेन ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, मेरे गुरु स्वामी हरिदास मुझसे भी सुंदर गाते हैं. मगर अकबर को तानसेन की बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह बोला कि नहीं, इस संसार में आपसे अच्छा गायक और कोई हो ही नहीं सकता. तानसेन ने कहा, बादशाह सलामत, यदि आप वास्तव में मेरे गुरुजी को सुनना चाहते हैं तो आपको एक बार वृंदावन चलना पड़ेगा. अकबर और तानसेन दोनों वृंदावन पहुंचे. वृंदावन में जाने के बाद सुबह सुबह स्वामी हरिदास दिव्य भजनों के द्वारा भगवान बाबा के बाल स्वरूप को सुबह सुबह जगा रहे थे. उन दिव्य भजनों को सुनकर अकबर को इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि उसी समय वो आनंद के कारण, रस के कारण, भाव में वह इतना डूब गया कि वह बेहोश हो गया. जैसे ही अकबर बेहोश हुआ, 10 मिनट बाद वो होश में आया और होश में आने के बाद तानसेन से बोला कि गाते तुम भी हो और तुम्हारे गुरुदेव भी गाते हैं, लेकिन दोनों में एक रूहानी फर्क है, दोनों में एक आध्यात्मिक फर्क है, दोनों में एक आध्यात्मिक अंतर है. और तानसेन, मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूं कि दोनों के बीच में जो आध्यात्मिक अंतर है वह है क्या. तानसेन ने कहा, बादशाह सलामत, मुझ में और मेरे गुरुदेव में बस एक ही अंतर है. वैसे तो वो अंतर ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन एक दूसरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या रूहानी भाव से देखा जाए तो वो अंतर बहुत बड़ा है. बादशाह ने पूछा कि मुझे जल्दी बताओ वो अंतर क्या है. तानसेन बोले कि बादशाह सलामत, मुझ में और मेरे गुरुजी में बस यही अंतर है कि मैं दिल्ली के बादशाह के लिए गाता हूं, वो दुनिया के बादशाह के लिए गाते हैं. जो दिल्ली के बादशाह में और दुनिया के बादशाह में अंतर है, वही मुझ में और मेरे गुरुदेव में अंतर है. शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास है और स्वामी के द्वारा प्रदत्त मानवीय मूल्य, उनसे बड़ी कोई शिक्षा संसार में हो नहीं सकती. सत्य, धर्म, प्रेम, शांति और अहिंसा,
हम जब घर बनाने जाते हैं तो मकान तो बहुत सुंदर बना लेते हैं, मकान का डिजाइन बहुत सुंदर बनता है, अनेक लोग देखकर कहते हैं कि वाह बहुत सुंदर, आपका घर बहुत अच्छा है, आपका मकान बहुत सुंदर है। लेकिन मकान बनाना बड़ा आसान है, मकान बनाना बड़ा सुलभ है, मकान बनाने में कोई बहुत बड़ी साधना नहीं है, लेकिन मकान को घर बनाना बहुत बड़ी बात है। भगवान बाबा का जो योग है, जो दिव्य योग है, जो प्रेम योग है, जो मानवीय मूल्य है, वो आपके घर को आपके मकान को घर बनाते हैं। क्योंकि मकान तो ईंट से बन जाता है, सीमेंट से बन जाता है, रेती से बन जाता है, लेकिन घर सत्य से बनता है, प्रेम से बनता है, शांति से बनता है, अहिंसा से बनता है, सेवा से बनता है, सत्कर्म से बनता है। ये सत्य, ये धर्म, ये शांति, ये प्रेम, ये अहिंसा, ये वास्तव में भारतीय शिक्षा का मूलाधार है। यदि भारतीय मौलिकता, भारतीय वास्तविकता और भारतीय ऋषि चिंतन किसी चीज पर स्थित है तो वह एकमात्र तत्व है सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा, और सदियों से हमारे जीवन में वह प्रतिपादित होता रहा है। और भगवान ने पुनः इस दिव्यावतार में, इस सत्य साईं अवतार में पुनः उसको प्रकाशित किया है। और उस सत्य के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, शांति के माध्यम से और सत्य वह अहिंसा के माध्यम से हम अपने जीवन में एक आध्यात्मिक रूपांतर ला सकते हैं। लेकिन स्वामी वो रूपांतर साधक के बस का नहीं है, व्यक्ति के योग की एक सीमा है, व्यक्ति के भक्ति की एक सीमा है, व्यक्ति के समर्पण की एक सीमा है। वो सीमा से ज्यादा न योगी हो सकता है, न भक्त हो सकता है, न ज्ञानी हो सकता है, न ध्यानी हो सकता है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आपकी कृपा में बहुत शक्ति है, आपके वरद हस्त में बहुत शक्ति है। वो कहीं भी हो, चाहे वो योग नहीं जानता हो, चाहे वो ध्यान नहीं जानता हो, चाहे वो मौन नहीं जानता हो, लेकिन आपके वरद हस्त यदि उसको प्राप्त हो जाए, आपकी दिव्य कृपा यदि उसे प्राप्त हो जाए, आपका दिव्य अनुग्रह यदि उसे प्राप्त हो जाए, तो जो सबसे पीछे की लाइन में खड़ा है, जिसकी मोक्ष की बरसों बरसों की संभावनाएं नहीं है, वो भी एक क्षण में आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मोक्ष को प्राप्त कर सकते। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि मुक्ति तो भगवान की दासी है, भगवान जहां जाते हैं वहां मुक्ति होती है और भगवान के पीछे पीछे मुक्ति चलती है। जब भक्त भगवान को पुकारते हैं, जब भक्तों की आंखों से आंसू बहते हैं और भगवान जब भक्तों को, भक्तों की रक्षा के लिए प्रशांति निलयम से यानी साक्षात वैकुंठ से दौड़ते हैं, उस समय भक्ति भी भगवान के पीछे पीछे दौड़ती है और भगवान से कहती है कि हे ठाकुर, हे विट्ठलनाथ, हे पंडरीनाथ, आप क्या चाहते हैं? आप अपने भक्त को मोक्ष देना चाहते हैं? आप अपने भक्त को मुक्ति देना चाहते हैं? एक बार आप अपने भक्त से ही पूछिए। भगवान भक्त से पूछते हैं कि बताओ क्या चाहिए, तुम्हें मुक्ति चाहिए या क्या चाहिए? तो भक्त कहता है, नहीं नहीं प्रभु, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं हर बार जन्म लूं और हर बार आपके दिव्य अवतार का दर्शन करूं, हर बार आपके दिव्य नयनों का दर्शन करूं, हर बार आपके दिव्य अधरों का दर्शन करूं, हर बार आपके दिव्य आध्यात्मिक सौंदर्य का दर्शन करूं, क्योंकि मुझ में, आप में बस भेद यही, मैं नर हूं, आप नारायण हैं, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार आपके हाथों में। मुझ में और आप में बस इतना ही भेद है कि मैं नर हूँ, आप नारायण हैं, मेरी सीमाएं हैं, आपकी सीमा नहीं है, मैं एक जगह व्याप्त हूँ, आप ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। प्रभु मेरी क्षमताएं सीमित हैं, बाबा मेरी शक्तियां सीमित हैं, बाबा मेरा सामर्थ्य सीमित है, लेकिन आपके कृपा की कोई सीमा नहीं, आपकी करुणा की कोई सीमा नहीं, आपके प्रेम की कोई सीमा नहीं। यही मानवीय मूल्य, यही वास्तव में, यही स्वामी बाबा के द्वारा, भगवान के द्वारा जो प्रदत्त वैश्विक मूल्य हैं, इनके द्वारा हम अपने आप में आनंदित हो सकते हैं, अपने आप में शांत हो सकते हैं, अपने आप अपने आसपास के वातावरण को स्वर्ग का, वैकुंठ का वातावरण बना सकते हैं। क्योंकि सुख और शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा व्यक्ति को बड़ा आदमी नहीं बनाती। शिक्षा के माध्यम से आप महंगे महंगे संसाधन ले लें, शिक्षा के माध्यम से आप समाज के अभिजाति व्यक्ति बन जाए, शिक्षा के माध्यम से हजारों लोग हमें नमस्कार करें, ये शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य बड़ा आदमी बनना नहीं है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छा आदमी बनना है। शिक्षा का लक्ष्य है कि हम अच्छे बने,
मनोर्भवा मनुष्य बने, जब हम किसी को देखें, जब हम किसी को निहारें, जब हम किसी की सेवा में जाएं, तो हमें ऐसा ना लगे कि हम नारायण सेवा के माध्यम से दूसरे की सेवा में जा रहे हैं, बल्कि ऐसा लगे कि नारायण सेवा के माध्यम से हम जिसे भोजन करा रहे हैं वो कोई दूसरा नहीं है, बल्कि मेरे अंदर का भगवान ही सामने वाले के भगवान को भोजन करा रहा है, भगवान ही भगवान का कार्य कर रहा है। मेरा और मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो आप, मेरा अपने में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो भगवान का है। ये मानवीय मूल्य जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं, ये मानवीय मूल्य जीवन को वैकुंठ बना सकते हैं। और वो भाव नीरज की वो दो लाइनें भगवान के चरणों में स्मरण में आ रही है कि अब कोई मजहब ऐसा ही चलाया जाए, कि अब कोई मजहब ऐसा ही चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, अब कोई मजहब ऐसा ही चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरे दुख दर्द का इतना हो असर उन पर भी, मैं रहूं भूखा तो उनसे भी ना खाया जाए। ये वास्तव में प्रेम है, ये वास्तव में शांति है, ये वास्तव में धर्म है, ये वास्तव में सत्य है, ये वास्तव में अहिंसा है। लेकिन सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा हमें कैसे प्राप्त हो सकती है? मात्र किताबों से तो जानकारी प्राप्त होती है, किताबों से हमारी जानकारी बढ़ सकती है, लेकिन सेवा से हमारा अहंकार घटता है, सेवा से हमारा मन झुकता है, भगवान के दिव्य दर्शनों से हमारा हृदय बदलता है। कहते हैं कि हजारों जन्मों के योग से जो प्राप्त नहीं होता, हजारों जन्मों की साधना से जो प्राप्त नहीं होता, हजारों जन्मों के भजनों से जो प्राप्त नहीं होता, वो एक क्षण के लिए भगवान के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है, भगवान के सानिध्य मात्र से प्राप्त हो जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मनुष्य की सामान्य वृत्तियां, मनुष्य की भौतिक वृत्तियां, मनुष्य की दैनिक वृत्तियां वैसे की वैसे ही रहती हैं। वो अंत समय तक अपनी वृत्तियों को नहीं छोड़ पाता, वो अंत समय तक इच्छाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन स्वामी की कृपा से, भगवान बाबा की कृपा से वो एक क्षण में इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध दृष्टांत भगवान के चरणों में याद आ रहा है कि एक बहुत धनिक व्यक्ति, उसका अंतिम समय और वो मर रहा था, आखिरी समय था, जाने वाला था, सारे बच्चे उसको घेर कर बैठे हुए थे, बड़ा संपन्न व्यक्ति, बड़ा धनवान व्यक्ति, और उसका अंतिम समय। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये बताओ कि बड़ा लड़का कहाँ है। पत्नी ने कहा आप चिंता नहीं करें, वो बड़ा लड़का यहीं आपके पास ही बैठा हुआ है। उसने पूछा अच्छा ये बताओ मझला लड़का कहाँ है। उसने कहा आप चिंता ना करें, मझला लड़का भी यहीं बैठा हुआ है। बोले छोटा लड़का कहाँ है। अरे पत्नी ने कहा आप बीमार हैं, आप अस्वस्थ हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, छोटा बच्चा भी यहीं बैठा हुआ है। सेठ जी बोले फिर दुकान पे कौन है। पत्नी ने कहा हे भगवान इनका आखिरी समय है, अब तो इन्हें भगवान बाबा का स्मरण करना चाहिए, अब तो इन्हें साई गायत्री का जाप करना चाहिए, अब तो इन्हें साई राम करना चाहिए, लेकिन ये है कि बड़ा लड़का कहाँ है, छोटा लड़का कहाँ है, मझला लड़का कहाँ है, इसी में व्यस्त है, क्या किया जाए। अब लड़कों को लगने लगा कि पिताजी जाने वाले हैं, अब लड़कों को लगने लगा कि पिताजी का अंतिम समय है, अब लड़कों को लगने लगा कि बस कुछ देर बाद पिताजी की अंतिम यात्रा निकल जाएगी। तो बड़े लड़के ने कहा एक काम करें, बहुत बड़ी गाड़ी बुलाएं, उस बहुत बड़ी गाड़ी पर उसको फूलों से सजाएं, उसे फूलों से सजाकर, उसे सुंदर ढंग से सजाकर पिताजी के शव को उस पर रखें और धूमधाम से गाजे बाजे के साथ पिताजी की अंतिम यात्रा निकालें। मझले लड़के ने कहा इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा, बहुत पैसे लग जाएंगे, इतने से तो काम नहीं चलेगा, एक काम करते हैं। बोले क्या। बोले एक काम करते हैं कि अपन तो अर्थी ही सजा लेते हैं, सस्ता सुंदर काम है, वैसे ही पिताजी की अंतिम यात्रा ले चलते हैं। छोटे लड़के ने कहा अर्थी भी सजाने की क्या जरूरत है, नगर निगम का ठेला किस काम आएगा, 20 रुपए में सारा कार्य हो जाएगा, इतने में तो वो बूढ़े सेठ जी ही उठकर बैठ गए कि 20 रुपए भी क्यों देते हो, मेरे जूते ले आओ, मैं पैदल ही चले चलता हूं। अंतकाल में हमें भगवान का स्मरण कैसे आए,
अंत काल में स्वामी का दिव्य सौंदर्य, स्वामी की दिव्य वाणी, स्वामी के दिव्य विचार और स्वामी की साईं गायत्री हमारे मन में कैसे आए, उसके लिए हमें इसी समय से अभ्यास शुरू करना पड़ेगा। यदि विद्यार्थी ये कहे कि हमें कुछ नहीं पढ़ना, जब हमारी परीक्षा होगी हम सब कुछ लिख आएंगे, तो ऐसा नहीं होता। परीक्षा के पहले अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास के बिना आप उत्तीर्ण हो ही नहीं सकते, अभ्यास के बिना आपका विकास हो ही नहीं सकता। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि अंत समय में हमारे हृदय में भगवान बाबा आए, अंत समय में भगवान का नाम हमारी वाणी से निकले, अंत समय में भगवान का दिव्य रूप हमें दिखाई दे, तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। और भगवान का योग बड़ा ही दिव्य योग है। संसार में अनेक अवतार हुए हैं, अनेक अवतारों के विषय में हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन ये पूर्ण अवतार है। रामावतार में बाबा के हाथ में धनुष शोभा देता था, कृष्णावतार में बांसुरी और यदा कदा सुदर्शन शोभा देता था, लेकिन इस अवतार में स्वामी एक दिव्य अस्त्र लेकर आए हैं, भगवान बाबा एक दिव्यतम अस्त्र लेकर आए हैं, और वो अस्त्र है प्रेम का अस्त्र, प्यार का अस्त्र, अपनत्व का अस्त्र। ये उस प्यार से, उस अपनत्व से, उस प्रेम से हमें बदलने आए हैं, वे अपने आंतरिक स्नेह से हमारे रोम रोम को बदलने आए हैं। स्वामी आप जानते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं ही नहीं सब मनुष्य हैं, और गलतियां हमसे बार बार होती हैं, गलतियां करना हमारी आदत है। मैं अपने आप को न साधु कहता हूँ, न संत कहता हूँ, न महात्मा कहता हूँ, लेकिन यदि मुझसे पूछें कि मेरी अंतिम इच्छा क्या है, मेरी आखिरी इच्छा क्या है, आखिरी सांस में मेरी इच्छा क्या है, तो मैं यही चाहता हूँ कि आखिरी समय तक, अंतिम समय तक आपके श्री चरणों में मेरा डिवोशन, मेरा समर्पण, मेरा प्रेम बना रहे। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यदि यही भाव भक्त के मन में पैदा हो जाए कि मुझे अपने भगवान से, मुझे अपने इष्ट से, मुझे अपने आराध्य से, मुझे अपने सरस्वती से और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि जब अंत समय आए, जब आखिरी वक्त आए, सांस रुक जाए, शरीर पसीना पसीना हो जाए, और जब प्राण घबराने लगे, उस समय हे नारायण, हे भगवान, हे प्रभु, आप जैसे ग्राह को बचाने आए थे वैसे मुझे बचाने आइए, मेरी रक्षा करिए बाबा। इतना कहकर आपकी वाणी आपकी चरणों में समर्पित उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध कवि की चार लाइनें मैं सुनाना चाहता हूँ, और वो कहकर अपनी बात समापन करना चाहता हूँ। थोड़ा सुना करो, थोड़ा सुनाया करो, थोड़ा सुनाया सुना करो, थोड़ा सुनाया करो, मुझे अपने सर्वस्व से और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि जब अंत समय आए, जब आखिरी वक्त आए, सांस रुक जाए, शरीर पसीना पसीना हो जाए।

थोड़ा सुनाया सुना करो, थोड़ा सुनाया करो, न शर्माया करो न घबराया करो, देखो हमेशा यूं ही मुस्कुराया करो, दुखों में भी ना आंसू बहाया करो। महाराज ये साई माँ का घर है, आया जाया करो, ये साई माँ का घर है, आया जाया करो। इति ओम, शांति शांति, ओम श्री।

சத்யசாயினி. அனந்த கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக் பராபர பிரம்ம யுகாவதார் பிரேமாவதார் சூரிய மே பிரகாஷ் கே ரூப் மே வித்யமான் சசி மே சீதல்தா கே ரூப் மே வித்யமான் ஜானியோ மே ஜான் கே ரூப் மே வித்யமான் யோகியோ மே யோக் கே ரூப் மே வித்யமான் மா மே மமதா கே ரூப் மே வித்யமான் பக்தோ மே பக்தி கே ரூப் மே வித்யமான் பாவுக் ஜனோ மே பாவோ கே ரூப் மே வித்யமான் ஔர் மீரா மே ஆசுவோ கே ரூப் மே வித்யமான் அனந்த கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக் யுகாவதார் பிரேமாவதார் பூர்ணாவதார் பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாய் பாபாஜி கே சரணோ மே ஹம் சபி கோட்டிஷா பிரணாம் கர்த்தே ஹே. பகவான், இஸ்ஸே சுந்தர் தின் ஜீவன் மே நீ ஆ சக்தா ஜப் ஆப் சாம்னே ஹோ ஔர் ஆப் ஹீ கி பாத் ஆப் ஹீ போல்னே வாலே ஆப் ஹீ சுன்னே வாலே சாரே சன்சார் மே ஆப் ஹீ நிவாஸ் கர்த்தே ஹே, சாரே பிரம்மாண்ட மே ஆப்கா ஹீ நிவாஸ் ஹே. சுவாமி கி திவ்ய சக்தி சே யே சாரா பிரம்மாண்ட சாரா சன்சார் ஆவ்ருத் ஹே. வேத ஜிஸ்கே விஷய மே கஹதே ஹே, சாஸ்திர ஜிஸ்கே விஷய மே காதே ஹே, தியானி ஜிஸ்கே லியே தியான் லகாதே ஹே, யோகி ஜிஸ்கே லியே யோக கர்தே ஹே, ஔர் பக்த ஜிஸ்கே லியே பக்தி கோ சாததே ஹே, வே கோய் ஔர் நஹி பல்கி ஸ்வயம் பகவான் பாபா ஹே. வஹி கீத தன்ய ஹே ஜோ பகவான் கே லியே ஹோ, வஹி பாவ தன்ய ஹே ஜோ பகவான் கே லியே ஹோ, வஹி விசார தன்ய ஹே ஜோ பகவான் கே லியே ஹோ, ஔர் வஹி சங்கீத தன்ய ஹே ஜோ பகவான் கே லியே ஹோ, ஔர் வஹி சிக்ஷா தன்ய ஹே ஜோ பகவான் கே லியே ஹோ. எக் பார் அக்பர் நே ஃபிரான்சென் சே பூச்சா கி முஜே லக்தா நஹி கி சன்சார் மே கோய் ஆப் சே அச்சா காதா ஹோகா, ஜப் ஆப் காதே ஹே தோ தீபக் ஜல் உட்டதே ஹே, ஜப் ஆப் காதே ஹே தோ விருஷ்டி ஹோனே லக்தி ஹே, ஐசா லக்தா ஹே முஜே தான்சேன் கி சன்சார் கே சர்வஸ்ரேஷ்ட காயக் ஆப் ஹீ ஹே. தான்சேன் நே கஹா, நஹி பாத்ஷா சலாமத், மேரே குரு ஸ்வாமி ஹரிதாஸ் முஸ்ஸே பீ சுந்தர் காதே ஹே. மகர் அக்பர் கோ தான்சேன் கி பாத் பர் விஸ்வாஸ் நஹி ஹுவா, ஔர் வஹ போலா கி நஹி இஸ் சன்சார் மே ஆப் சே அச்சா காயக் ஔர் கோய் ஹோ ஹீ நஹி சக்தா. தான்சேன் நே கஹா, பாத்ஷா சலாமத், யதி ஆப் வாஸ்தவ மே மேரே குரு ஜி கோ சுன்னா சாஹதே ஹே தோ ஆப்கோ எக் பார் விருந்தாவன் சல்னா படேகா. அக்பர் ஔர் தான்சேன் தோனோ விருந்தாவன் பஹுச்சே. விருந்தாவன் மே ஜானே கே பாத் சுபா சுபா ஸ்வாமி ஹரிதாஸ் திவ்ய பஜனோ கே த்வாரா பகவான் பாபா கே பால் ஸ்வரூப் கோ சுபா சுபா ஜகா ரஹே தே. உன் திவ்ய பஜனோ கோ சுன்கர் அக்பர் கோ இத்தனா ஆனந்த் ஆயா, இத்தனா ஆனந்த் ஆயா கி உசி சமய வோ ஆனந்த் கே காரணம், ரஸ் கே காரணம், பாவ மே வஹ இத்தனா டூப் கயா கி வஹ பேஹோஷ் ஹோ கயா. ஜைசே ஹி அக்பர் பேஹோஷ் ஹுவா, தஸ் மினிட் பாத் வோ ஹோஷ் மே ஆயா, ஔர் ஹோஷ் மே ஆனே கே பாத் தான்சேன் சே போலா கி காதே தும் பி ஹோ ஔர் தும்ஹாரே குருதேவ் பி காதே ஹே, லேகின் தோனோ மே ஏக் ரூஹானி ஃபர்க் ஹே, தோனோ மே ஏக் ஆத்யாத்மிக் ஃபர்க் ஹே, தோனோ மே ஏக் ஆத்யாத்மிக் அந்தர் ஹே. ஔர் தான்சேன் மே அபி தக் யே நஹி சமஜ் பா ரஹா ஹூ கி தோனோ கே பீச் மே ஜோ ஆத்யாத்மிக் அந்தர் ஹே வோ ஹே க்யா. தான்சேன் நே கஹா, பாத்ஷா சலாமத், முஜ் மே ஔர் மேரே குருதேவ் மே பஸ் ஏக் ஹீ அந்தர் ஹே. வைசே தோ வோ அந்தர் ஜாதா படா நஹி ஹே, லேகின் ஏக் தூசரே ஆத்யாத்மிக் திருஷ்டிகோண் சே யா ரூஹானி பாவ சே தேகா ஜாயே தோ வோ அந்தர் பஹுத் படா ஹே. பாத்ஷா நே பூச்சா கி முஜே ஜல்தி பதாவோ வோ அந்தர் க்யா ஹே. தான்சேன் போலே கி பாத்ஷா சலாமத், முஜ் மே ஔர் மேரே குருஜி மே பஸ் யஹி அந்தர் ஹே கி மே தில்லி கே பாத்ஷா கே லியே காதா ஹூ, வோ துனியா கே பாத்ஷா கே லியே காதே ஹே. ஜோ தில்லி கே பாத்ஷா மே ஔர் துனியா கே பாத்ஷா மே அந்தர் ஹே, வஹி முஜ் மே ஔர் மேரே குருதேவ் மே அந்தர் ஹே. சிக்ஷா கா உத்தேஷ் வியக்தி கா ஆத்யாத்மிக் விகாஸ் ஹே, ஔர் ஸ்வாமி கே த்வாரா பிரதத் மானவிய மூல்ய உன்சே படி கோ சிக்ஷா சம்சார் மே ஹோ நஹி சக்தி, சத்ய தர்ம பிரேம சாந்தி ஔர் அஹிம்சா. ஹம்
जब घर बनाने जाते हैं तो मकान तो बहुत सुंदर बना लेते हैं, मकान का डिजाइन बहुत सुंदर बनता है, अनेक लोग देखकर कहते हैं कि वाह बहुत सुंदर, आपका घर बहुत अच्छा है, आपका मकान बहुत सुंदर है। लेकिन मकान बनाना बड़ा आसान है, मकान बनाना बड़ा सुलभ है, मकान बनाने में कोई बहुत बड़ी साधना नहीं है, लेकिन मकान को घर बनाना बहुत बड़ी बात है। भगवान बाबा का जो योग है, जो दिव्य योग है, जो प्रेम योग है, जो मानवीय मूल्य है, वो आपके घर को आपके मकान को घर बनाते हैं। क्योंकि मकान तो ईंट से बन जाता है, सीमेंट से बन जाता है, रेती से बन जाता है, लेकिन घर सत्य से बनता है, प्रेम से बनता है, शांति से बनता है, अहिंसा से बनता है, सेवा से बनता है, सत्कर्म से बनता है। ये सत्य, ये धर्म, ये शांति, ये प्रेम, ये अहिंसा, ये वास्तव में भारतीय शिक्षा का मूलाधार है। यदि भारतीय मौलिकता, भारतीय वास्तविकता और भारतीय ऋषि चिंतन किसी चीज पर स्थित है तो वह एकमात्र तत्व है सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा, और सदियों से हमारे जीवन में वह प्रतिपादित होता रहा है। और भगवान ने पुनः इस दिव्यावतार में, इस सत्य साई अवतार में पुनः उसको प्रकाशित किया है। और उस सत्य के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, शांति के माध्यम से और सत्य वह अहिंसा के माध्यम से हम अपने जीवन में एक आध्यात्मिक रूपांतर ला सकते हैं। लेकिन स्वामी वो रूपांतर साधक के बस का नहीं है, व्यक्ति के योग की एक सीमा है, व्यक्ति के भक्ति की एक सीमा है, व्यक्ति के समर्पण की एक सीमा है। वो सीमा से ज्यादा न योगी हो सकता है, न भक्त हो सकता है, न ज्ञानी हो सकता है, न ध्यानी हो सकता है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आपकी कृपा में बहुत शक्ति है, आपके वरद हस्त में बहुत शक्ति है। वो कहीं भी हो, चाहे वो योग नहीं जानता हो, चाहे वो ध्यान नहीं जानता हो, चाहे वो मौन नहीं जानता हो, लेकिन आपके वरद हस्त यदि उसको प्राप्त हो जाए, आपकी दिव्य कृपा यदि उसे प्राप्त हो जाए, आपका दिव्य अनुग्रह यदि उसे प्राप्त हो जाए, तो जो सबसे पीछे की लाइन में खड़ा है, जिसकी मोक्ष की बरसों बरसों की संभावनाएं नहीं है, वो भी एक क्षण में आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि मुक्ति तो भगवान की दासी है, भगवान जहां जाते हैं वहां मुक्ति होती है और भगवान के पीछे पीछे मुक्ति चलती है। जब भक्त भगवान को पुकारते हैं, जब भक्तों की आंखों से आंसू बहते हैं और भगवान जब भक्तों को भक्तों की रक्षा के लिए प्रशांति निलयम से यानी साक्षात वैकुंठ से दौड़ते हैं, उस समय भक्ति भी भगवान के पीछे पीछे दौड़ती है और भगवान से कहती है कि हे ठाकुर, हे विट्ठलनाथ, हे पंडरीनाथ, आप क्या चाहते हैं? आप अपने भक्त को मोक्ष देना चाहते हैं? आप अपने भक्त को मुक्ति देना चाहते हैं? एक बार आप अपने भक्त से ही पूछिए। भगवान भक्त से पूछते हैं कि बताओ क्या चाहिए, तुम्हें मुक्ति चाहिए या क्या चाहिए? तो भक्त कहता है, नहीं नहीं प्रभु, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं हर बार जन्म लूं और हर बार आपके दिव्य अवतार का दर्शन करूं, हर बार आपके दिव्य नयनों का दर्शन करूं, हर बार आपके दिव्य अधरों का दर्शन करूं, हर बार आपके दिव्य आध्यात्मिक सौंदर्य का दर्शन करूं, क्योंकि मुझमें आप में बस भेद यही, मैं नर हूँ, आप नारायण है, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार आपके हाथों में। मुझमें और आप में बस इतना ही भेद है कि मैं नर हूँ, आप नारायण हैं, मेरी सीमाएं हैं, आपकी सीमा नहीं है, मैं एक जगह व्याप्त हूँ, आप ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। प्रभु मेरी क्षमताएं सीमित हैं, बाबा मेरी शक्तियां सीमित हैं, बाबा मेरा सामर्थ्य सीमित है, लेकिन आपके कृपा की कोई सीमा नहीं, आपकी करुणा की कोई सीमा नहीं, आपके प्रेम की कोई सीमा नहीं। यही मानवीय मूल्य, यही वास्तव में, यही स्वामी बाबा के द्वारा, भगवान के द्वारा जो प्रदत्त वैश्विक मूल्य हैं, इनके द्वारा हम अपने आप में आनंदित हो सकते हैं, अपने आप में शांत हो सकते हैं, अपने आप अपने आसपास के वातावरण को स्वर्ग का, वैकुंठ का वातावरण बना सकते हैं। क्योंकि सुख और शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा व्यक्ति को बड़ा आदमी नहीं बनाती। शिक्षा के माध्यम से आप महंगे महंगे संसाधन ले लें, शिक्षा के माध्यम से आप समाज के अभिजात व्यक्ति बन जाएं, शिक्षा के माध्यम से हजारों लोग हमें नमस्कार करें, ये शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य बड़ा आदमी बनना नहीं है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छा आदमी बनना है। शिक्षा का लक्ष्य है कि हम अच्छे बने,
मनोर्भवा मनुष्य बने, जब हम किसी को देखें, जब हम किसी को निहारें, जब हम किसी की सेवा में जाएं, तो हमें ऐसा ना लगे कि हम नारायण सेवा के माध्यम से दूसरे की सेवा में जा रहे हैं, बल्कि ऐसा लगे कि नारायण सेवा के माध्यम से हम जिसे भोजन करा रहे हैं वो कोई दूसरा नहीं है, बल्कि मेरे अंदर का भगवान ही सामने वाले के भगवान को भोजन करा रहा है, भगवान ही भगवान का कार्य कर रहा है। मेरा और मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो आप, मेरा अपने में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो भगवान का है। ये मानवीय मूल्य जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं, ये मानवीय मूल्य जीवन को वैकुंठ बना सकते हैं। और वो भाव, नीरज की वो दो लाइनें भगवान के चरणों में स्मरण में आ रही है कि अब कोई मजहब ऐसा ही चलाया जाए, कि अब कोई मजहब ऐसा ही चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, अब कोई मजहब ऐसा ही चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरे दुख दर्द का इतना हो असर उन पर भी, मैं रहूं भूखा तो उनसे भी ना खाया जाए। ये वास्तव में प्रेम है, ये वास्तव में शांति है, ये वास्तव में धर्म है, ये वास्तव में सत्य है, ये वास्तव में अहिंसा है। लेकिन सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा हमें कैसे प्राप्त हो सकती है? मात्र किताबों से तो जानकारी प्राप्त होती है, किताबों से हमारी जानकारी बढ़ सकती है, लेकिन सेवा से हमारा अहंकार घटता है, सेवा से हमारा मन झुकता है, भगवान के दिव्य दर्शनों से हमारा हृदय बदलता है। कहते हैं कि हजारों जन्मों के योग से जो प्राप्त नहीं होता, हजारों जन्मों की साधना से जो प्राप्त नहीं होता, हजारों जन्मों के भजनों से जो प्राप्त नहीं होता, वो एक क्षण के लिए भगवान के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है, भगवान के सानिध्य मात्र से प्राप्त हो जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मनुष्य की सामान्य वृत्तियां, मनुष्य की भौतिक वृत्तियां, मनुष्य की दैनिक वृत्तियां वैसे की वैसे ही रहती हैं। वो अंत समय तक अपनी वृत्तियों को नहीं छोड़ पाता, वो अंत समय तक इच्छाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन स्वामी की कृपा से, भगवान बाबा की कृपा से वो एक क्षण में इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध दृष्टांत भगवान के चरणों में याद आ रहा है कि एक बहुत धनिक व्यक्ति, उसका अंतिम समय और वो मर रहा था, आखिरी समय था, जाने वाला था, सारे बच्चे उसको घेर कर बैठे हुए थे, बड़ा संपन्न व्यक्ति, बड़ा धनवान व्यक्ति, और उसका अंतिम समय, उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये बताओ कि बड़ा लड़का कहाँ है। पत्नी ने कहा आप चिंता नहीं करें, वो बड़ा लड़का यहीं आपके पास ही बैठा हुआ है। उसने पूछा अच्छा ये बताओ मझला लड़का कहाँ है। ने कहा आप चिंता ना करें, मझला लड़का भी यहीं बैठा हुआ है। बोले छोटा लड़का कहाँ है। अरे पत्नी ने कहा आप बीमार हैं, आप अस्वस्थ हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, छोटा बच्चा भी यहीं बैठा हुआ है। सेठ जी बोले फिर दुकान पे कौन है। पत्नी ने कहा हे भगवान इनका आखिरी समय है, अब तो इन्हें भगवान बाबा का स्मरण करना चाहिए, अब तो इन्हें साई गायत्री का जाप करना चाहिए, अब तो इन्हें साई राम करना चाहिए, लेकिन ये है कि बड़ा लड़का कहाँ है, छोटा लड़का कहाँ है, मझला लड़का कहाँ है, इसी में व्यस्त है, क्या किया जाए। अब लड़कों को लगने लगा कि पिताजी जाने वाले हैं, अब लड़कों को लगने लगा कि पिताजी का अंतिम समय है, अब लड़कों को लगने लगा कि बस कुछ देर बाद पिताजी की अंतिम यात्रा निकल जाएगी। तो बड़े लड़के ने कहा एक काम करें, बहुत बड़ी गाड़ी बुलाएं, उस बहुत बड़ी गाड़ी पर उसको फूलों से सजाएं, उसे फूलों से सजाकर, उसे सुंदर ढंग से सजाकर पिताजी के शव को उस पर रखें और धूमधाम से गाजे बाजे के साथ पिताजी की अंतिम यात्रा निकालें। मझले लड़के ने कहा इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा, बहुत पैसे लग जाएंगे, इतने से तो काम नहीं चलेगा, एक काम करते हैं। बोले क्या। बोले एक काम करते हैं कि अपन तो आरती ही सजा लेते हैं, सस्ता सुंदर काम है, वैसे ही पिताजी की अंतिम यात्रा ले चलते हैं। छोटे लड़के ने कहा आरती भी सजाने की क्या जरूरत है, नगर निगम का ठेला किस काम आएगा, 20 रुपए में सारा कार्य हो जाएगा। इतने में तो वो बूढ़े सेठ जी ही उठकर बैठ गए कि 20 रुपए भी क्यों देते हो, मेरे जूते ले आओ, मैं पैदल ही चले चलता हूं। अंतकाल में हमें भगवान का स्मरण कैसे आए,
अंत काल में स्वामी का दिव्य सौंदर्य, स्वामी की दिव्य वाणी, स्वामी के दिव्य विचार और स्वामी की साईं गायत्री हमारे मन में कैसे आए, उसके लिए हमें इसी समय से अभ्यास शुरू करना पड़ेगा। यदि विद्यार्थी ये कहे कि हमें कुछ नहीं पढ़ना, जब हमारी परीक्षा होगी हम सब कुछ लिखाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। परीक्षा के पहले अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास के बिना आप उत्तीर्ण हो ही नहीं सकते, अभ्यास के बिना आपका विकास हो ही नहीं सकता। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि अंत समय में हमारे हृदय में भगवान बाबा आए, अंत समय में भगवान का नाम हमारी वाणी से निकले, अंत समय में भगवान का दिव्य रूप हमें दिखाई दे, तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। और भगवान का योग बड़ा ही दिव्य योग है। संसार में अनेक अवतार हुए हैं, अनेक अवतारों के विषय में हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन ये पूर्ण अवतार है। रामावतार में बाबा के हाथ में धनुष शोभा देता था, कृष्णावतार में बांसुरी और यदा कदा सुदर्शन शोभा देता था, लेकिन इस अवतार में स्वामी एक दिव्य अस्त्र लेकर आए हैं, भगवान बाबा एक दिव्यतम अस्त्र लेकर आए हैं, और वो अस्त्र है प्रेम का अस्त्र, प्यार का अस्त्र, अपनत्व का अस्त्र। वे उस प्यार से, उस अपनत्व से, उस प्रेम से हमें बदलने आए हैं, वे अपने आंतरिक स्नेह से हमारे रोम रोम को बदलने आए हैं। स्वामी आप जानते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं ही नहीं सब मनुष्य हैं, और गलतियां हमसे बार बार होती हैं, गलतियां करना हमारी आदत है। मैं अपने आप को न साधु कहता हूँ, न संत कहता हूँ, न महात्मा कहता हूँ, लेकिन यदि मुझसे पूछें कि मेरी अंतिम इच्छा क्या है, मेरी आखिरी इच्छा क्या है, आखिरी सांस में मेरी इच्छा क्या है, तो मैं यही चाहता हूँ कि आखिरी समय तक, अंतिम समय तक आपके श्री चरणों में मेरा डिवोशन, मेरा समर्पण, मेरा प्रेम बना रहे। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यदि यही भाव भक्त के मन में पैदा हो जाए कि मुझे अपने भगवान से, मुझे अपने इष्ट से, मुझे अपने आराध्य से, मुझे अपने सर्वस्व से और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि जब अंत समय आए, जब आखिरी वक्त आए, सांस रुक जाए, शरीर पसीना पसीना हो जाए, और जब प्राण घबराने लगे, उस समय हे नारायण, हे भगवान, हे प्रभु, आप जैसे ग्राहक को बचाने आए थे वैसे मुझे बचाने आइए, मेरी रक्षा करिए बाबा। इतना कहकर आपकी वाणी आपकी चरणों में समर्पित उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध कवि की चार लाइनें मैं सुनाना चाहता हूँ, और वो कहकर अपनी बात समापन करना चाहता हूँ। थोड़ा सुना करो, थोड़ा सुनाया करो, थोड़ा सुनाया सुना करो, थोड़ा सुनाया करो, न शर्माया करो, न घबराया करो, देखो हमेशा यू ही मुस्कुराया करो, दुखों में भी ना आंसू बहाया करो। महाराज ये साई माँ का घर है, आया जाया करो, ये साई माँ का घर है, आया जाया करो। इति ओम, शांति शांति, ओम श्री साई।